श्रीमन्नभीष्टभरतिलोकबन्धो श्रीश्रीनिवासजगदेकदयैकसिन्धो श्रीदेवतागृहभुजान्तरतिः।